रेवि रशदि भदिदना उधय रशदि भदिदना अरे तेन तिदा इतिवरिक येषु इंतिक्न तेना ते भदिदना दाय भुगनो खोई ते देने न व तेन इम्ब ते उगरो खोई दीति दाय भुगनो खोई दीति थो यक तेने तो न उम्ब तो हिन सरि ओकना धीम दाय फल लदा तेना दाय था तिफल लदा तेना हेनिन इम्ब रेक न दाई न कन सरि ओकना हेनिन इम्ब रेक न थु दाई दुख न खन आवा राजु समर तुष्बोनाय सलामी ने ओकना एने निस्थिर ओकना ने।